आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्थान एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2083 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म।

आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्थान एसी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2083 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म।